0: 103.8 अंतर्मन को आवाज।
1: दस लाख जितने यही हो मौका, पर्यो पर्यो ठक्कै पर्यो
2: होइन हो कसरी पर्यो।

0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Talchin.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98166 95301
4: Cameras stand by. Reload music.
5: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरु

प्रतिष्ठा पाउने सम्मान दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम अलधरे सतीम चकुंती सुते विज्ञानी विदुरे भवति भवताम प्रतिष्ठा नारायणे जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा।

0: चाहिँ मेरै हातले मर्छ।
1: मलाई 1,00,000 रुपियाँ दिलाइदिनु न ल। 1,00,000 रुपियाँ भयो भने म यो ग्यारेजलाई अलिक ठुलो बनाउँथे नि।
2: लौ न मलाई 1,000 रुपियाँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो।
1: होइन प्रभु, 1,00,000 रुपियाँ प्लिज।
2: 1,000 रुपियाँ
1: यहाँ जा, ला 1,000 रुपियाँ जा। 1,00,000 रुपियाँ
3: तिमी मेरो सास हो भने कृष्ण मेरो मुटु हो।
0: अनि म चाहिँ के किन्नी कि फोक्स
4: हो? त जति बेला नि पटारी रहने आन्द्रा होस्
0: के रे त जस्तो फोरी हो र आन्द्रा हुनलाई। देख्दैन मेरो बास्नाले पुरै गाउँमा बगेको छ।

0: ఒక్కసారి హనుమాన్ జీ సీతా మాట్లాడి సాత్ సముద్రం పార కరిగారు. మేరీ అమర సీత మహోదయా
1: आमा एउटा कुरा सोधौँ. तपाईँ सबैभन्दा बढी माया कस्ता गर्नुहुन्छ, मलाई कि कृष्णलाई?
0: मलाई सोध्नु त है. आमाले धेरै माया तलाई गर्छ, तर आमालाई धेरै माया मैले गर्छु.
2: यदि कुनै दिन मलाई केही भइहाल्यो भने तिमी नहुन्जेलसम्म तिमीलाई खुरेर मेरो मुटु छड्किरहनेछ.
3: दिस इज रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज. आस्था अनि भरोसा घर निर्माणको विश्वासिलो आधार अनयारा कन्स्ट्रक्सन एन्ड ट्रेड प्राली गाछे पानी.
4: हजुर, घर निर्माण, बाटो नाला, सामुदायिक भवन, विद्यालय आदि निर्माणको लागि हामी

0: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस न्युरोड पोखरामा अब सबै प्रकारका उपचार सेवा सम्भव छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाचन, प्राध्यापक डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्माया पुन,
1: फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी डाक्टर शंकर बराल,
0: हाड जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, उप प्राध्यापक डाक्टर प्रवीण थापा र हाड जोड्ने नसा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ,
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेचन,
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री, डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ,
1: नाक कान घाटी तथा थाइरोइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ, छाला विज्ञान भेनेरोलोजी र कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले,
0: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ,
1: एन्थेरियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, प्लास्टिक एण्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पियुष गिरी,
0: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर विशाल गुरुङ, डाक्टर सुस्मिता गुरुङ,
1: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
0: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडेल र मनोचिकित्सक डाक्टर मानकाजी थापा मगर।
2: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा पोस्ट अप सेवा फिजियोथेरापी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी इको टीएमटी हल्चर पीएफटी युरोफ्लोमेट्री डायलिसिस सेवा र 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
3: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली पोखरा 9 न्युरो फोन 061 590 162 590 163।

0: 103.8
1: अन्तर्मन को आवाज
2: स्टुडियो साइट
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301